रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची

Mirchi. It's hot.

खाना बनाते हो या नहीं, माय क्वेश्चन टू यू इज, पकोड़े की बैटर की कंसिस्टेंसी देखी है? मतलब चम्मच से निकालो तो ऐसे ऐसे फ्लूजी तरह से लोटता पोटता पहुंच जाता है फ्राइंग पैन में और फ्राई हो जाता है, लेकिन फ्राई होने से पहले तो कुछ कंसिस्टेंसी नहीं होती है. इट लुक्स लाइक वेट टोस्ट बेसिकली. दैट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी दैट ऑल माई एक्स बॉयफ्रेंड्स हैव हैड व्हेन इट कम्स टू इमोशनल स्टेबिलिटी. जिस तरफ देखो ना, जिस भी एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि यार इस बंदे का जो दिमागी हालत थी वो इतनी कॉम्प्रोमाइज थी कि आई रियली डोंट नो व्हाट वाज वर्स, देयर मेंटल कंडीशन और देयर फाइनेंशियल कंडीशन. एंड व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट मी, कि मुझे लड़के नहीं प्रोजेक्ट्स पसंद है, कि हम आपको लेंगे एक अनसक्सेसफुल अंडरडॉगर, हम आपको कन्वर्ट कर देंगे इनटू अ सक्सेसफुल राइटर, भले इस प्रोसेस में हमारा कचरा क्यों ना हो जाए. और अगर मेरी तरह आप भी उस तरह के एम्बिशियस इंसान हो जिसका एम्बिशन करियर में नहीं निकलता है, बिकॉज दैट्स सो बोरिंग इन मेनस्ट्रीम, आपका एम्बिशन रिलेशनशिप में बंदे को टोटली 180 डिग्री कन्वर्ट करने में मिलता है, तो व्हाई डोंट यू हिट मी अप, मे बी वी आर सोल सिब्लिंग्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

मुझे पता है कि आपको अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह, लेकिन फॉर अ चेंज अदरक के साथ साथ अपनी चाय में इलायची डाल के देखो. एंड आई एम नॉट इवन बिगिनिंग टू टेल यू अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ इलायची, लेकिन आपका जो लव मेकिंग प्रोसेस है ना, वो डेफिनेटली बहुत एनहांस हो जाएगा. सो कार्डमम इज बेसिकली एक ऐसा स्पाइस, यानी कि इलायची ऑफ कोर्स, दैट हेल्प्स यू इंक्रीज योर एनर्जी और आपके अंदर जितनी भी टायर्डनेस होती है ना, वो सब खत्म कर देता है, ताकि आप एब्सोल्युटली रिफ्रेश फील करते हो. और क्योंकि ये एक गर्म मसाला है लिटरली, आपके ब्लड में इट गिव्स यू द राइट काइंड ऑफ हीट टू गेट द राइट काइंड ऑफ नॉटी. तो अगली बार आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कॉफी पीने जा रहे हो, डिच द कॉफी, गेट सम मसाले वाली चाय स्पेशली विद इलायची. एंड उसके बाद यू कैन थैंक मी इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम मिर्ची रोशी है, काम आपसे प्यार करना है, नाम की स्पेलिंग ROCHIE है. एंड ऑनेस्टली जिसके पास लव है ना, उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.

Mirchi. It's hot. Mirchi, it's hot.

बस तेरा चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एक्स्ट्रा सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा साम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ जब भी होती लो तो मेरा नंबर

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप. अब बारी है फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पे, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक. अ स्पेशल शाउट आउट ऑल दिस एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10. संजू राठौर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन बैंगल्स. 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद रोमांस इज स्टिल इन द एयर, रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में. राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन है मुसाफिर कैफे से ये गाना. गाने का नाम है दरमिया ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 10.

0: ना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है।

0: बंजारे दी आर्टिस्ट की आवाज में, एक गाने का नाम है बैरन, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले साई और भयंकर का गाना राधिमा ने एंट्री मारी ऑन गाना नंबर 7। और गाना नंबर 8 पर था फरक दी आर्टिस्ट का तारे।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. गाना नंबर 6 पर हमने सुना बैरन, जो कि हरियाणवी भाषा में है। कभी कभी गाना आपको लैंग्वेज आने की वजह से नहीं पसंद आता, इट्स जस्ट अबाउट द म्यूजिक। एंड काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। ये गाना दुनिया को एक मलयालम इंडिपेंडेंट सॉन्ग की तरह मिला। पिछले साल नवंबर में रिलीज हुआ था एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इस गाने के मेकर्स ने भी सोचा होगा दैट दिस सॉन्ग विल बिकम सच अ बिग हिट। सोशल मीडिया रील से क्रॉस ओवर होके दिस सॉन्ग बिकेम सो बिग दैट इस गाने में ऑफिशियल हिंदी रीमिक्स किया है श्रेया घोषाल ने। इफ यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट कल्याणी का रीमिक्स एंड आई हैव टू एडमिट आई कैन नॉट स्टॉप लिसनिंग टू द सॉन्ग। ओरिजिनल गाना मलयालम में, लेकिन जो लिरिक्स हैं उसमें बेसिकली बात हो रही है एक लड़की की, उसकी स्माइल, डिम्पल्स, उसकी आंखें, इनक्रेडिबल एफ्रो R&B इन्फ्लुएंस्ड प्रोडक्शन एंड अ उबर मॉडर्न ग्रूव। एंड देन श्रेया घोषाल का हुक टेक्स दिस सॉन्ग टू अनदर लेवल। आई थिंक दैट्स द रीजन इस गाने में लैंग्वेज का कोई बैरियर है ही नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द बीट। अब श्रेया घोषाल की आवाज के साथ अर्जुन KDS रॉन एंड 54 का गाना कल्याणी is playing right next for you. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके it's a Gaana number 5. You're listening to Gaana ID Top 10. बंदी का नाम है कनिका, enjoy.
1: Number 5.

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: कृष्णा एंड धंधा न्योली वाला का गाना, गाने का नाम है बूम शाका। 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। पॉप म्यूजिक इज डेफिनेटली हैविंग इट्स बूम शाका मोमेंट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 5 पर हमने सुना कल्याणी। एक मलयालम गाने में श्रेया घोषाल ने अपना हिंदी रीमिक्स दिया है। द वर्ल्ड ऑफ पॉप म्यूजिक इज सो डाइवर्स दैट ये एक बॉक्स में आ ही नहीं सकता है। आप एक दिन क्लासिकल गा सकते हो, अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक पॉप कोलैबोरेशन कर सकते हो, एन R&B सॉन्ग और अ फोक क्लासिकल। एक ही आर्टिस्ट ये हर तरह के म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड वो पॉप म्यूजिक उन्हें स्पेस देता है। एंड जब हम हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे सेलिब्रेटेड प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल को इतना एक्सपेरिमेंटल होते देखते हैं इन पॉप म्यूजिक, ये विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। श्रेया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सर्टेन साउंड आ जाती है। फिल्म, बिग मेलोडीज, ऑर्केस्ट्रेशन, दैट अनमिस्टेकेबल वॉइस, वो वॉइस वही है बट शी हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर विद हर सॉन्ग्स। फन फैक्ट, श्रेया घोषाल ने अपना पहला प्लेबैक गाना किया था विच वॉज बेरी पिया इन देवदास। उसको सुन के एवरीबडी वॉज लाइक, हु इज दिस गर्ल, हमने इसको अभी तक कैसे नहीं सुना है। एंड आज 2026 में शी इज रिलीज्ड अ सॉन्ग कॉल्ड बेरी पिया जो कि ओरिजिनल बेरी पिया से बिल्कुल अलग है। श्रेया घोषाल की आवाज वही है लेकिन प्रोडक्शन कंटेम्प्रेरी है। इंडियन क्लासिकल के टचेस हैं, सितार हैं, बट द रिदम इज टू अपबीट एंड वेरी मॉडर्न। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। स्पेशल शाउट आउट टू बेरी पिया, श्रेया घोषाल की आवाज में, अनुराग मिश्रा की कॉम्पोजिशन, आलोक रंजन अनुराग मिश्रा के लिरिक्स। बेरी पिया इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में दैट वाज बेरी पिया. श्रेया घोषाल इज स्टेपिंग आउटसाइड हर फेमिलियर सेटिंग्स एंड आप वो कदम लेने से डर रहे हैं. एट आरजे करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी. कोई गाने के बारे में कुछ भी सजेशन देना है बिंदास आके हिट मी अप. बैक ऑन द काउंटडाउन अगले वाले गाने की बारी. बंजारे द आर्टिस्ट का गाना दिस इज बरसात. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3.
1: नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल
0: कनिकास कसर क्लासिक।
1: हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज
2: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी,
1: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए।
1: गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल, बाबुल सुप्रियो की आवाज में। 2003 में ये गाना रिलीज हुआ था। सामी मरूफ की कॉम्पोजिशन, फैज अनवर के लिरिक्स एंड बाबुल सुप्रियो की वो वार्म फजी स्लाइटली ड्रीमी आवाज। इस गाने में एक बहुत ही सिंपल सी फीलिंग है। आप किसी को पसंद करते हो, शायद उसे पता भी नहीं है, एंड आप बस इमेजिन करते रहते हो कि कभी उसका दिल मुझ पर भी आए तो। एंड कुछ तो बात है, अक्टूबर के माहौल में हवा चल रही है, आप कहीं से घर लौट रहे हो, फोन में कोई मैसेज नहीं है, यू आर स्माइलिंग एनीवे बिकॉज दिमाग में वही इंसान है। आई डोंट नो अबाउट यू, अक्टूबर रियली मेक्स मी डिल्यूजनल। वो वार्म फजी फीलिंग आ जाती है, बटरफ्लाइज थोड़ी ज्यादा फील होती है। एंड दिस सॉन्ग बाय बाबुल सुप्रियो इज द परफेक्ट साउंडट्रैक टू माय अक्टूबर इवनिंग। सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। थ्रोइंग बैक टू आवर क्लासिक्स, बाबुल सुप्रियो की आवाज में दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

कुछ तो बात है यार हवा में, पता नहीं क्यों ये पुराने गाने अचानक ज्यादा अच्छे लगने लग गए बाबुल सुप्रियो की आवाज में। दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। 90s 2000s का वो गाना जो आज भी आपको लगता है कि दिस इज द सॉन्ग मैन, हमसे आके शेयर करो। मैं और आशिका है माय साउंड प्रोड्यूसर, हम आपके रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं। यू माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। मिट्टा अरोर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद बादशाह की कॉम्पोजिशन, हितेन का म्यूजिक, शर्वी यादव बादशाह का गाना, गाने का नाम है बैंगर। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके बैंगर at the top. Dono gaane back to back only on Gaana Indie Top 10. Pandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

या भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख इश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5.
2: हर हफ्ते बॉलीवुड की दुनिया में नए गाने जन्म लेते हैं। कुछ गाने पहली बार सुनते ही दिल में उतर जाते हैं, कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी रात की याद, किसी जर्नी का साउंडट्रैक या किसी अधूरी कहानी की आवाज बन जाते हैं। उनके पीछे होती हैं ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से और ऐसे सवाल जो म्यूजिक खत्म होने के बाद भी हवा में ठहर जाते हैं। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का बॉलीवुड का सबसे डेफिनेटिव म्यूजिक काउंटडाउन। और आज का जो काउंटडाउन है वो भी एक म्यूजिकल जर्नी है, जहां मिलेंगे नए हिट्स, पुरानी यादें और उन गानों के पीछे छुपे वो राज जिन पर शायद आपने कभी उतना गौर नहीं किया। सो I've got you covered. Number 20 पर है Welcome to the Jungle का ये गाना, ऊंचा लंबा कद, which has been rehashed. लेकिन इस जर्नी की पहली धुन होगी कॉकटेल की माशूका। Turn the volume up. This is the Mirchi Talk 20. Let's go.
0: Number 19.

0: तमन्ना भाटिया की एक्टिंग चॉप्स और स्क्रीन प्रेजेंस अपनी जगह है, लेकिन ठुमक ठुमक देख के लगता है कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि अगर तमन्ना है तो एक डांस नंबर तो बनता है। एंड वन यार इसका ये गाना था जिसने नंबर 18 पर डेब्यू किया। I've already spoken about this song last week, लेकिन ट्रेलर देखते हुए मुझे एक ख्याल आया, यार बॉलीवुड ने जंगल को कभी प्रॉपरली खतरनाक बनाया ही नहीं। देखो हॉलीवुड में ऐसी बहुत फिल्में हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जुरासिक पार्क और द बीस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आप अगर एक जंगल में हैं या आप एक समंदर में हैं और सामने कोई ऐसा जानवर है जो आपको खा सकता है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। किसी भूत की जरूरत नहीं, किसी आत्मा की जरूरत नहीं, प्रकृति यानी नेचर खुद विलन है। बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई थी काल नाम की, जिसमें इस टेरिटरी को टच भी किया था। इट हैड जॉन अब्राहम, विवेक ओबेरॉय, अजय देवगन, लेकिन उसके बाद टाइगर अटैक्स, जंगल थ्रिलर्स एंड फिर अक्सर हम सुपर नेचुरल की तरफ मुड़ गए। यार इंडिया में इतने घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, डेंजरस एनिमल्स हैं, और एक ऑडियंस है जो जेन्युइनली एज ऑफ द सीट सर्वाइवल थ्रिलर देखना चाहेगी, क्योंकि मैं तो देखूंगा। एक फैमिली, एक जंगल और सामने एक जानवर जो विलन नहीं है, बस जानवर है। लेकिन टॉकिंग अबाउट फैमिली, एक और परिवार है जो स्क्रीन पर हमें पागल करने वाला है, एंड दैट इज अजय देवगन यानी कि विजय साळगांवकर का परिवार। दृश्यम 3 का ये गाना विच डेब्यूट लास्ट वीक, दिस वीक इट्स ऑन नंबर 17, विंगंसा
1: नंबर 17। दृश्यों के बाहर नजरों को डाल, संभल कर चलना और खुद को

0: ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 12

सांसों की माला। कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो आपको किसी और वक्त में ले जाते हैं और उस सफर में सिर्फ मेलेडी नहीं होती, आवाज, इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम, हर चीज मिलकर एक जमाना बनाती है। अब नेक्स्ट गाने को ही देखिए, तबाही, टॉक्सिक, 90s में सेट एक फिल्म, लेकिन उसका साउंड आज का है। तो फिर सवाल ये है कि फिल्म को उसके वक्त का बनाता क्या है? शायद संजय लीला भंसाली से बेहतर कोई फिल्म मेकर इस सवाल का जवाब नहीं जानता।

इनकी धुन सुनते ही सिर्फ गाने याद नहीं आते, पूरी दुनिया याद आ जाती है। खामोशी में सन्नाटा भी सुर बन जाता है। देवदास में इंतजार ट्रेजेडी बन जाती है। बाजीराव मस्तानी में मोहब्बत बगावत बन जाती है। यही संजय लीला भंसाली का कमाल है। वो म्यूजिक से कैरेक्टर की फीलिंग नहीं, उसकी पूरी इनर वर्ल्ड दिखा देते हैं। कभी कभी लगता है वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, वो एक कॉम्पोजिशन कंडक्ट कर रहे होते हैं जो फिर एक फिल्म बन जाती है। लव एंड वॉर उनकी आने वाली फिल्म, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए इस बात का सबसे हॉन्टिंग एग्जाम्पल मेरे लिए देवदास का वो गाना है जहाँ इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और मोहब्बत मरने का नाम नहीं लेती। सिलसिला ये चाहत का, माय पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

0: कुछ फिल्म मेकर्स की दुनिया इतनी खास होती है कि उस दुनिया के लिए हिट गाना बनाना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। सूरज बड़जात्या की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ गाना सिर्फ कैची नहीं हो सकता, उसे सिचुएशन में ही रहना पड़ता है, कहानी के साथ चलना पड़ता है और फिर भी हिट होना पड़ता है। ये प्रेम मोलिया पिछले हफ्ते नंबर 9 पर डेब्यू हुआ था इसका, लेकिन इस हफ्ते इसने छलांग मारी है टू नंबर 5, तो प्रूफ तो कर दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया के लिए सूरज बड़जात्या के साथ काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज आखिर है क्या?
1: मैं आर्ट के साथ थोड़ा सा कमर्शियली भी सोचता हूँ, और सूरज जी के साथ अपना म्यूजिक फिट करना उनकी पिक्चर में वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज वो अपनी सिचुएशन से नहीं हिलते। और मेरे लिए ये हो जाता है कि किसी भी तरह ऑडियो वैल्यू हो जाए, जो पहले बहुत सीमलेसली अगर आप देखें तो होता था, बिकॉज एक दायरा था जिसमें हम 3-4 लोग इंटरेक्ट करते थे, म्यूजिक बनाते थे, और म्यूजिक को देखने का जो एक माहौल था बहुत बहुत क्लियर था इस रेंज में सिंगर गाएगा। लेकिन आज बहुत चीज़ें बदल गई हैं, 7 लाख सिंगर्स हैं, 300 गाने रोज रिलीज होते हैं, उसमें एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक देना जो एक म्यूजिक डायरेक्टर का फर्ज होना चाहिए, कि अगर डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया है तो आप अपना काम उस शिद्दत से करो, बट उनके वर्ल्ड को चेंज मत करो, लेकिन अपना ऑडियो वैल्यू भी फॉलो करो। बिकॉज मुझे ऑलवेज ऐसा लगता है कि सिर्फ सिचुएशन को अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है, वो ग्रेट बात है, बट देन मेरे माइंडसेट से वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर है कि भाई सिर्फ फॉलो करता है, लेकिन आपको लिया गया है क्योंकि आपको हिट गाने भी चाहिए। लेकिन सूरज जी कि हम फैन भी हैं और एग्री भी करते हैं, और वो चाहे कितना भी बड़ा हिट गाना हो वो छोड़ देंगे, वो नहीं लेने वाले ऐसे कि मैं फिट कर लूं।
0: यानी फॉर्मूला सिंपल नहीं है, सूरज जी की दुनिया से बाहर भी नहीं जाना और उसके अंदर रहकर गाने को इतना बड़ा बनाना है कि वो दुनिया के बाहर भी सुना जाए। वाव, और शायद इसी बैलेंस का रिजल्ट है ये प्रेम मोलिया का नंबर 9 से नंबर 5 तक आना। फिर आता है एक ऐसा गाना जिसका कनेक्शन अपनी फिल्म से कम और 90s की यादों से ज्यादा है। आंखों से तूने ये क्या कह दिया इज ऑन नंबर 4, और अब सरप्राइज सरप्राइज एंड आल्सो अ शॉक कि पिछले हफ्ते का नंबर 1 गाना इस हफ्ते 2 स्पॉट्स नीचे है। किसने सोचा था, बट हियर इट इज ऑन नंबर 3, आवारापन 2 का एंड आल्सो आवारापन 1 का, तेरा मेरा रिश्ता। नंबर 3।

वारूम नंबर 3 से नंबर 2 पर इस हफ्ते। और शायद इस गाने की खूबसूरती इसी में है, यह आपको एक लव स्टोरी का एहसास तो देता है लेकिन उसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। बाकी कहानी आप खुद लिखते हैं। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं सुनाते, वो उसके लिए एक पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, वो महलों में गूंजती है, पर्दों के पीछे छुपती है, शीशों में टूटती है और कभी कभी जंग के बीच भी जिंदा रहती है। वो बुलंद इमारतें, वो भारी पर्दे, वो शीशे, वो झूमर, वो कहने और वो घोड़े स्क्रीन पर आते ही कहानी को एक और जमाने में ले जाते हैं। यही तो संजय लीला भंसाली की दुनिया है, एक ऐसा भव्य दृश्य संसार जहां हर फ्रेम अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन अब भंसाली साहब खुद कह रहे हैं, इस बार ना इमारतें होंगी, ना पर्दे होंगे, ना घोड़े होंगे। लव एंड वॉर, एक कंटेम्प्रेरी कहानी, विंटेज फ्रेम, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और बीच में रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट। और यहीं से लव एंड वॉर का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, जब भंसाली अपने पहचाने हुए महल, पर्दे, झूमर और घोड़ों को पीछे हटा देते हैं तो क्या बचता है? 3 एक्टर्स, उनके चेहरे, उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक दूसरे के सामने उनकी मौजूदगी। यानी लव एंड वॉर में भंसाली साहब अपने भव्य विजुअल वर्ल्ड को दोहराने के बजाय एक्टिंग और एक्टर्स की प्रेजेंस को एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं। लेकिन भंसाली साहब के लिए असली सवाल शायद कुछ और है, जब दुनिया का स्पेक्टिकल हटा दिया जाए, क्या 3 एक्टर्स खुद स्पेक्टिकल बन सकते हैं? क्या रणबीर, विकी और आलिया अपनी परफॉर्मेंस से वो स्केल पैदा कर सकते हैं जो पहले भंसाली साहब के मैग्नम ओपसेस ने क्रिएट किया था? और इसलिए लव एंड वॉर सिर्फ संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म नहीं लगती, ये उनका अपनी ही पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। भव्यता को फ्रेम से हटाकर उसे एक्टर्स के चेहरों और परफॉर्मेंसेस में ढूंढने का एक्सपेरिमेंट। और शायद बॉलीवुड का स्पेक्टिकल भी बदल रहा है, चीजें नई हो रही हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें फिर से नई लग रही हैं। इस हफ्ते एक बार फिर से चोटी पर, शिखर पर, धुरंधर का गहरा हुआ बाय अरिजीत सिंह एंड शाश्वत सचदेव, द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 yet again। नंबर 1।

0: तेरा मेरा रिश्ता अब नंबर वन नहीं है, लेकिन कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि जो गाना उसकी जगह आया है वो अपने नाम की तरह वक्त के साथ और गहरा हुआ है। That was गहरा हुआ from धुरंधर once again on number one, लेकिन बस एक और हफ्ता, एक और सफर और बॉलीवुड की कहानी में कुछ नए पन्ने जुड़ गए। So until the next time we meet here on the Mirchi Top 20, this is your boy Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.

Mirchi. It's hot.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: बस तुम रहते हो। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट,
1: मिर्ची इट्स हॉट।
2: Dinner, dinner, dinner, dinner.

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है।

Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन एज मी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

गुड मॉर्निंग मिर्ची मॉर्निंग्स इज ऑफिशियली ऑन. मेरा नाम है प्रिसिला एंड इफ यू आर ऑलरेडी ऑन योर सेकंड कॉफी डोंट यू वरी, मैं जज नहीं कर रही हूँ तुमको. थर्ड कॉफी पियोगे देन वील हैव टू हैव द कॉन्वर्सेशन. अभी वेदर यू आर स्टक इन ट्रैफिक, रशिंग टू वर्क, पैकिंग लंचेस, बच्चों को उठा रहे हो, उनको स्कूल पहुंचाने की तैयारी कर रहे हो, या फिर बस बेड से खुद ही नेगोशिएट करते जा रहे हो कि बस 5 मिनट और यार, आई एम राइट हियर विद यू. और मैं अगले कुछ घंटों तक तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ. और आज का काम काज काफी सिंपल है. थोड़ी सी हम यहाँ वहाँ की बातें करने वाले हैं, थोड़ा सा बॉलीवुड की बातें करने वाले हैं, थोड़ा सा गॉसिप होने वाला है, देन वील हैव अ लॉट ऑफ अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. और बीच बीच में थोड़ी सी बकबक भी करने वाले हैं और साथ साथ में होने वाले हैं ढेर सारे मिर्चीदार बैंगर्स. बिकॉज ऑनेस्टली यार, लाइफ तो काफी स्ट्रेसफुल है, हमें स्ट्रेसफुल नहीं होना है. एंड हे, कीप योर फोन हैंडी, समथिंग वेरी शाइनी, वेरी देसी एंड वेरी वर्थ शोइंग ऑफ इज कमिंग योर वे ऑन मिर्ची. एक कॉन्टेस्ट की बात कर रही हूँ जिसके बारे में थोड़ी सी देर में बताऊंगी. अभी के लिए तुम ये नोट डाउन करो कि व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. एंड कम से हाय टू मी ऑन इंस्टा एंड एक्स. मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. दोनों की जरूरत पड़ेगी कॉन्टेस्ट में, इसलिए पहले से बता दिया. अभी बताती हूँ कि आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में and let's do a little bit of rewinding here. 1480 में ग्रेट स्टैंड ऑन द उग्रा रिवर मॉस्को और टाटर मंगोल फोर्सेस फेस टू फेस एंड इवेंचुअली टाटर मंगोल रूल ओवर मॉस्को एंड्स. फास्ट फॉरवर्ड टू 1871, शिकागो में ग्रेट शिकागो फायर हुआ. मैसिव फायर था जहां 300 से ज्यादा लाइव्स वर लॉस्ट एंड सिटी का ह्यूज पार्ट वाज डिस्ट्रॉयड. 1919 में गांधी जी लॉन्च्ड यंग इंडिया, अ वीकली जर्नल, एंड देन कम्स 1932, इंडिया गेट्स इट्स एयरफोर्स. So today is Indian Air Force Day as well. And then 1945, IR microwave oven gets patented after inventor Percy Spencer notices a candy bar melting in his pocket during an experiment. 1956, mein Don Larson pitches the only perfect game in World Series history. Perfect means 27 batters, 27 outs. No drama, no errors. And one more important date we must remember. 2005, mein the devastating Kashmir earthquake aya. Magnitude tha 7.6, which killed tens of thousands. A tragic day that affected communities across region. And that's it. The history for today is done. Abhi future ki baat kare agar, to kuch amazing bangers tumhare liye play karne wali hoon main. Aur more madness and updates ke liye mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name. That is MIRCHIPRIS. This is on Instagram and X. And WhatsApp number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में मर्जी मॉर्निंग्स पर एंड बिफोर यू स्टार्ट हाउस हंटिंग लिसन टू दिस
1: गुड मॉर्निंग वेरी मच लिसनर्स दिस इज जेसन डोशी फ्रॉम एसटी कैपिटल फंडिंग विद टुडेज एसटीसीएफ मॉर्गेज मार्केट अपडेट द एवरेज 30 ईयर मॉर्गेज रेट इज नाउ एट 7.125% एंड द 10 ईयर ट्रेजरी इज सिटिंग अराउंड 5.32% द हाईएस्ट इट्स बीन इन ओवर 20 ईयर्स द हायर मूव इन रेट्स इज ड्रिवन बाय यस्टरडेज फेड मिनट्स व्हिच शो दैट ऑफिशियल्स आर स्टिल कंसर्न्ड अबाउट इन्फ्लेशन एंड सम आर इवन टॉकिंग अबाउट एडिशनल रेट हाइक्स फॉर Buyers, I wouldn't try to time the market based on today's rate. At these levels, the bigger opportunity may be structuring the loan correctly and having a strategy for refinancing when the rates do eventually come down. And if you're an investor looking to build your real estate portfolio, check out our DSCR loans, which offer competitive rates with no personal income verification. For more information on these loan programs, give me a call directly at 732-429-4050 or visit us at sdcapitalfunding.com. Again, this is Jason Doshi from SD Capital Funding. Welcome home.
0: And there you have it, your mortgage update on Mirchi. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Connect with me, Insta or X par. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033647244. Stay tuned and stay hot.

आज का वेदर ना इतना परफेक्ट है कि तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने घर की याद आ जाएगी। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अब पता करते हैं आज का वेदर का हालचाल क्या है। फिलहाल 55 डिग्रीज फारेनहाइट पर हम बैठे हुए हैं, मोस्टली क्लियर स्काइज है एंड विंड की वजह से फील हो रहा है 50 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। सो सुबह सुबह अगर घर से निकल रहे हो तो एक लाइट जैकेट अपने साथ कैरी करके जाना बनता है। एंड डोंट ओवरडू इट, शादी में नहीं जा रहे हो, सिर्फ बाहर जा रहे हो कुछ एरेंज रन करने के लिए या फिर अपने ऑफिस। मॉर्निंग स्टार्ट कूल एंड सनी अराउंड 54 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास, लेकिन टेम्परेचर जो है वो जल्दी जल्दी से ऊपर चढ़ने वाला है। बाय लंच टाइम विल बी एट अराउंड 73 डिग्रीज फारेनहाइट एंड द आफ्टरनून पीक्स एट अ वेरी प्लेजेंट 74 टू 76 डिग्रीज फारेनहाइट। और बेस्ट पार्ट ये है कि 0% चांस है रेन का। रिपीट आफ्टर मी, जीरो रेन। आज अम्ब्रेला को पूरी तरह से छुट्टी दी जा सकती है। विंड्स विल बी कमिंग इन फ्रॉम द वेस्ट एट अराउंड 7 to 14 माइल्स पर आवर, पिकिंग अप अ लिटिल इन द आफ्टरनून। ह्यूमिडिटी जो है वो ड्रॉप होगी ड्रामेटिकली फ्रॉम दैट 96% मॉर्निंग क्लिंगिनेस टू अ मच मोर कंफर्टेबल 32 to 37% लेटर। सन इज आउट विद मॉडरेट यूवी इंडेक्स ऑफ 4 अराउंड मिड डे। सो सनस्क्रीन स्पेशली इफ यू आर स्टेपिंग आउट SPF 50++++ वाला लगाना बनता है। सनसेट जो है आज वो होगा 6:28 PM के आसपास। टेम्परेचर स्लाइड टू अबाउट 70 डिग्रीज फारेनहाइट एंड ओवरनाइट वी आर हेडिंग इनटू द लोज ऑफ 50s। सो टुडेज फोरकास्ट इज सनी प्लेजेंट ड्राई। बेसिकली आज का वेदर जो है वो थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा है और करना बनता भी है। इट्स अ नाइस डे टू गो आउट एंड व्हाइल यू आर एंजॉयिंग योर आउटिंग्स कम हैंग आउट विद मी इंडोर्स, यानी कि इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हो तो मुझे 9033647244 पर। दैट्स माई नंबर एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Good morning, guys. I hope Priscilla is with us. And now it's time to get updated with what's happening around the world. सबसे पहले फ्रांस के सैन डेनी में स्कूल स्टूडेंट्स बेटर स्कूल कंडीशंस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे. मेयर बाली बागियाको सेड पुलिस मूव टुवर्ड द स्टूडेंट इवन दो अकॉर्डिंग टू हिम दे वरंट बिहेविंग अग्रेसिवली एंड ही पब्लिकली डिफेंडेड देम सेइंग दीस किड्स कुड बी हिज ओन चिल्ड्रन. नंबर टू पर फ्लाई दुबई फ्लाइट में इंडियन कैप्टन स्मिथ मचार पर को पायलट के अलेजेड अटैक के बाद अ साइबर क्राइम ग्रुप कॉल्ड एवरेस्ट इज क्लेमिंग इट हैक्ड फ्लाई दुबई. द ग्रुप सेज It accessed more than 4 gigabytes of data across thousands of files. The exact circumstances of the alleged breach are still unclear. So, internet par jo bhi claim aaye, usko forward karne se pehle fact check zarur kar le. And lastly, a sad news coming in from Bollywood. Veteran actor Nana Patekar has passed away at the age of 75 after a cardiac arrest in Goa. From Parinda to Krantiveer to welcome his voice, his intensity, his dialogues and screen presence were unmistakable. 3 National Film Awards, a career spanning decades, and definitely an actor who didn't need 47 takes to make you pay attention. Aaj Bollywood ne ek powerful performer lose kiya hai. May he rest in peace. And that's your Mirchi Hour ka 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Connect karo mujhse Instagram aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. WhatsApp par mera number hai 90336472444. Stay tuned and stay hot.

Hey there, good morning guys. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और एक बहुत ही बढ़िया खबर तुम्हें बताती हूँ, 9 चांसेस टू गेट लकी मिल रहे हैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिर्ची पर। नवरात्रि में गरबा तो ये सब करते हैं यार, लेकिन तुमको 9 नाइट्स में 9 गोल्डन चांसेस मिल रहे हैं गोल्ड चेन जीतने के। मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेंगी 9 गोल्डन चेन्स थ्रू आउट नवरात्रि। यस, यू हर्ड मी राइट, 1 प्रेशियस गोल्ड चेन एवरी डे। वीरानी ज्वेलर्स लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 चांसेस टू से वाओ, कम टू मी माय प्रेशियस। करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, बस व्हाट्सएप करना है नवरात्रि टू 9033 मिर्ची, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर 9033647244। या फिर तो मुझे अभी के अभी डीएम कर सकते हो इंस्टा पर, नवरात्रि लिखो, अपना पूरा नाम और अपना फोन नंबर लिखकर मुझे भेजो राइट अवे। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड देन वेट फॉर माय कॉल, क्योंकि उसके बाद हम एक कॉन्टेस्ट खेलने वाले हैं। और ओक ट्री रोड पर हो, आसपास हो, वीरानी ज्वेलर्स पे जाकर चेकआउट करो, उनके फेस्टिव ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर, और ये ऑफर्स ऑनलाइन भी तुम अवेल कर सकते हो veeraniejewelers.com पर। और अभी जय माता दी बोलकर फटाफट से पार्टिसिपेट करना शुरू करो कॉन्टेस्ट में। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, कमिंग अप सम मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर बर्थडे अनाउंसमेंट। इंडिया से आज के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को गौरी खान रेड चिलीज की बॉस लेडी एंड आल्सो द बॉस लेडी ऑफ एसआरके, साथ साथ में मोना सिंह, आवर फॉर एवर जस्सी, द एक्टर्स लक्ष्मी मांशू, राजेश शर्मा, समीक्षा सिंह, इंडियन यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी एंड पाकिस्तानी एक्टर जावेद शेख, इन सबकी भी आज हैप्पी बर्थडेज है। साउथ सिनेमा में भी बर्थडे गैंग काफी सॉलिड है। कनाडा फिल्म मेकर योगराज भट्ट भी आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। देन इंटरनेशनली वी गॉट मैट डेमन, सिगोर्नी वीवर, ब्रूनो मार्स, निक कैनन, बेला थोर्न एंड ऑथर आर एल स्टाइन। सो अगर आज यू आर ऑल्सो ब्लोइंग आउट कैंडल्स, लिसन, बर्थडे ट्विन लिस्ट तो प्रिटी इम्प्रेसिव है। आज तुम्हारा कॉन्डक्ट भी इम्प्रेसिव होना चाहिए। केक का फर्स्ट बाइट एकदम सुपर बड़ा और ऑसम होना चाहिए, सेकेंड बाइट भी तुम्हारा ही होना चाहिए, और कैलोरीज की चिंता तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो सब कल से हैंडल करना। अभी के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। और मुझे बर्थडे शाउट आउट भेजना हो तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड बिकॉज बर्थडे इज आंट दी ओनली रीजन टू गेट लकी दिस अक्टूबर, मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स को मिल सकती है गोल्डन चेन्स। यस, इस नवरात्रि पर वीरानी ज्वेलर्स लेकर आए मिर्ची 9 लक का हार, जहां 9 नाइट्स ऑफ नवरात्रि में 9 गोल्डन चांसेस तुम्हें मिल रहे हैं हर दिन प्रेशियस गोल्ड चेन्स जीतने का मौका, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची पर। इसके लिए करना तुम्हें सिर्फ इतना है, व्हाट्सएप खोलना है, नवरात्रि टाइप करना है और 9033 मिर्ची पर अभी के भी भेज देना है रजिस्टर करने के लिए अपने पूरे नाम के साथ 9033647244 पर। दूसरा तरीका बताती हूँ, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। यहाँ पर नवरात्रि टाइप करके अपना पूरा नाम और फोन नंबर साथ में लिखकर भेजो टू पार्टिसिपेट एंड देन वेट फॉर माय कॉल। और अगर ओक ट्री रोड पर वीरानी ज्वेलर्स को विजिट करना है तो बहुत ही अच्छा मौका है, बिकॉज फेस्टिव ऑफर्स चल रहे हैं वहां पर, 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर ढेर सारे ऑफर्स हैं, फेस्टिव सीजन भी चल रहा है। वीरानीज्वेलर्स.com पर जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। अभी फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स आने वाले हैं, उसके लिए बने रहो मेरे यानी कि प्रिसला के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: हेलो जी, मैं हूँ प्रिसिला। तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और आप पता करते हैं गोल्ड का क्या हाल चाल चल रहा है।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,370. आज गोल्ड के प्राइजेस $4,370 पर ट्रायंस के साथ अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। गणेश चतुर्थी, पुष्य नक्षत्र, धनतेरस, दिवाली, डांडिया सब हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं और गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी अपर ट्रेंड ले रहे हैं। इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आइए राज ज्वेल्स के साथ 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 9 मंथ की फाइनेंसिंग में ज्वेलरी घर लेके जाए और RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। कमिंग अप मिर्ची दार बैंगर्स फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

Hey there, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवर का 3। सबसे पहले इलॉन मस्क सेज स्टारलिंक इज बीइंग ब्लॉक्ड इन इंडिया बाय सर्टेन ओलिगार्क्स। इंडियाज कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री सेज द क्लेम इज बेसलेस एंड सेज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन अप्रूवल फ्रेमवर्क इज फेयर। नंबर टू पर ध्रुव राठी एंड एक्टर प्रकाश राज जॉइंड अ डेमोन्स्ट्रेशन इन बैंगलोर ओवर द SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन इंडिया। ऑर्गेनाइजर्स हेल्ड अ पीपल्स ट्रिब्यूनल विद प्रोटेस्टर्स रेजिंग कंसर्न्स अबाउट अलेज्ड रॉन्गफुल डिलीशंस फ्रॉम वोटर्स लिस्ट फॉलोइंग अ सिंबॉलिक चप्पल प्रोटेस्ट। And lastly, Ranbir Kapoor ki much awaited Ramayana Part 1 is reportedly moving its India release date up to November 5th with paid previews on November 4th. So Diwali ke movie plans jo hain wo thode se adjust karne padenge apne calendar mein. And that's it for your Mirchi Aapka 3. Mera naam hai Priscilla. Sunte raho mujhe aur follow bhi kar lo Mirchi. Pris is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp ka number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और आप देखते हैं किसका राशि फल क्या कहता है।
1: मिर्ची राशि जोन
0: एरीज यानी कि मेष राशि, आज थोड़ा सा अपने इमोशंस को साइड सीट दो और फैमिली का काम निपटाओ, लेकिन प्लीज अपनी मेंटल पीस को अनपेड इंटर्न मत बना के रखो यार। एक छोटा सा सेल्फ केयर स्टेप जरूर लेना आज के दिन। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 4। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज क्रिएटिविटी जो है फुल फॉर्म में है। पेंडिंग काम फाइनली बस हो गए जी बोल सकते हो। आज तुम्हारी बात में वेट रहेगा, तो टेल समवन यू केयर, थोड़ा सा प्यार वर्बली भी, थोड़ा सा व्हाट्सएप पर और थोड़ा सोशल मीडिया पर दिखाना बनता है। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, होम फैमिली और टू डू लिस्ट, आज यूनिवर्स जो है बेसिकली बोल रहा है पहले घर का पेंडिंग काम करो, उसके बाद आगे की चीजें करो। अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करो, एजुकेशन रिलेटेड प्लान्स जो है उन पे फोकस करो। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, आज मिनी एडवेंचर का मूड है, शॉर्ट ट्रिप, कुछ नया सीखना, मूवी, लाइब्रेरी, हॉबीज, बेसिकली ब्रेन को भी एंटरटेनमेंट चाहिए और वो उसे मिलना चाहिए आज। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, मून अलर्ट है, सो बिग शॉपिंग और मेजर डिसीजंस को थोड़ा सा होल्ड करो। होम इंप्रूवमेंट प्लान्स जो है उनको इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट के ड्रीम हाउस से थोड़ा सा रियलिस्टिक रखो। ओके, लकी कलर इज मस्टर्ड, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, गुड डे, बट इमोशंस थोड़े से एक्स्ट्रा लाउड हो सकते हैं आज। ग्राउंडेड रहो, प्रैक्टिकल चॉइसेस रखो और हर छोटी छोटी बात को टेड टॉक मत बनाओ, स्पेशली अपने दिमाग में। लकी कलर इज प्लम, लकी नंबर इज 8। एंड दैट वॉज योर राशि जोन पार्ट 1। बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे फॉलो भी कर लो। मिर्ची प्रिस is my handle name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: वेट कर रहे थे राशि जोन का और मैं आ चुकी हूँ। मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आज मॉडरेशन इज द मंत्रा। लो प्रोफाइल रखो, केयरलेस डिसीजन से बचो और हेल्थ को थोड़ा सा अटेंशन दो यार। बेसिकली अननेसेसरी ड्रामा को पोलाइटली सीन करके छोड़ दो। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 2। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सोशलाइज करो, शमूज करो, लोगों से कनेक्ट करो, हेल्प चाहिए आस्क फॉर इट। आज ट्रस्ट बिल्ड करना तुम्हारी सुपर पावर हो सकती है। लकी कलर इज एमरल्ड, लकी नंबर इज 7। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, पेशेंस माई फ्रेंड, पेशेंस, फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिव देखो और ओवरनाइट लाइफ मेकओवर का प्लान थोड़ा सा पॉज करो। ओके, हर मंडे को न्यू मी बनना जरूरी नहीं होता है। लकी कलर इज लाइट ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, माइनर डिलेज पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं, बट स्लो एंड स्टडी विंस टुडे। टास्क्स पे आज कमिट करो और कॉन्ट्रैक्ट्स फाइन प्रिंट पढ़ो उनकी। मैंने टर्म्स नहीं पढ़े इज नॉट अ कैप्रिकॉर्न स्ट्रेटजी। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 10। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट हैं, अपॉर्चुनिटीज को यस बोलो लेकिन अग्रीमेंट्स को केयरफुली रीड करो। इकोनॉमी मूव करेगी बट सिग्नेचर करने से पहले स्पेक्टिकल्स जरूर मूव करो। ओके, लकी कलर इज सिल्वर, लकी नंबर इज 11। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसीज यानी कि मीन राशि, ट्रस्ट योर गट स्पेशली विथ योर कॉलिंग। फाइनेंशियल प्लान्स थोड़े से प्राइवेट रखो, न्यू इन्वेस्टमेंट्स और अननेसेसरी बोरोइंग में कॉशन रखो। हर टू गुड टू बी ट्रू ऑफर को फेरीटेल एंडिंग नहीं समझा करो बेटे। लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 12। एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

खत्म हो रहा है एंड आई एम लीविंग यू विद समथिंग वेरी वेरी चमकता हुआ. दैट्स अ रैप ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी दिस मॉर्निंग. वेदर यू वर ड्राइविंग टू वर्क, प्रिटेंडिंग टू वर्क, या फिर ट्रैफिक में बैठकर सोच रहे थे यार मैं घर से आज निकली ही क्यों हूँ, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और ये याद रखो, यू कैन ऑलवेज फाइंड मी एट मिर्ची प्रिस MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. अब ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि यू कम एंड से हाय टू मी एंड सेंड मी योर रजिस्ट्रेशंस राइट हियर राइट नाउ, क्योंकि नवरात्रि आ रहा है और इस बार लक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा शाइनी बनाने की जरूरत है. मिर्ची के साथ नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक तुम जीत सकते हो गोल्ड चेन. दैट्स राइट, मिर्ची 9 लक का हार आ चुका है प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें 9 नवरात्रि की रातों को 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज तुमको मिल रही है. हर दिन प्रेशियस गोल्ड चेन्स आर अप फॉर ग्रैब्स. पार्टिसिपेट करना बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है. पहला तरीका है कि अपना व्हाट्सएप खोलो और उस पे टाइप करो नवरात्रि और उसे भेज दो मेरे व्हाट्सएप के नंबर 9033647244 पर. दैट्स 9033 मिर्ची. या फिर सिंपली अपना इंस्टाग्राम खोलो, मेरा हैंडल ढूंढो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम MIRCHIPRIS. इस पर डायरेक्टली मुझे DM करो, नवरात्रि लिखो अपना पूरा नाम और फोन नंबर के साथ, मुझे अभी के भी भेज दो एंड देन गेट रेडी फॉर अ कॉल फ्रॉम मी. एंड इफ यू आर अराउंड ओकट्री रोड, वीरानी ज्वेलर्स पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं उनके 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर. तो अगर ज्वेलरी खरीदने वहां पर जाना बनता है, ऑनलाइन विजिट करना है तो viranijewelers.com पर जाकर चेकआउट करो. एंड अभी सीरियसली आई एम आउट ऑफ हियर. प्रिसिला सिंह टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड. यू बीन अमेजिंग. कल सुबह मुलाकात होगी फिर से कॉफी के साथ मिर्ची मॉर्निंग्स पर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. It's hot.
1: किन तो ले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू।

0: बस तुम रहते हो।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Avicii. It's hot.
1: Do tole ki mundri la de, tin tole

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: दीवाना
3: एक दीवाना शहर में
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी
3: दो दीवाने शहर में.

रूना लैला की आवाज है, गुलजार साहब के लिरिक्स हैं, पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। हेलो हेलो वेलकम, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म घरौंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977 और ये साल एक सुपर डुपर हिट साल था। अगर हम फिल्म की बात करें, ये वो साल था जब मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हो रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बिग बैनर्स की रिलीज हो रही थी। फिर चाहे अमर अकबर एंथनी हो, परवरिश हो, हम किसी से कम नहीं हो। और ऐसे में अ वेरी लो बजट फिल्म विद अमोल पालेकर एंड यू नो जरीना वहाब, ये फिल्म ने भी अपनी जगह बना ली। इसी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं। अब अगला कौन सा गाना है ये मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी। सुन करके वापस आओ, कहानी और किस्से उस जमाने के अभी तो शुरू हैं। आगे आगे सुनो, होता है क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जहरीला इंसान मूवी से ये गाना विच इज पिक्चराइज्ड ऑन ऋषि कपूर, इट इज संग बाय किशोर दा। सुनाने वाली कौन है आपको पुरानी जींस पे? करेक्ट, आपकी प्यारी श्रेया। अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आरडी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें। ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोर दा की आवाज ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए। लेकिन भाई आरडी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। सो किशोर दा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक ओ हंसिनी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, वो उस फिल्म का है जिसने रातों रात डेब्यू एक्टर्स को स्टार बना दिया था। एक थे कुमार गौरव और दूसरी थी विजेता पंडित। वेल, अगर आप रेट्रो फैन हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म ने एक्चुअली में दो दोस्तों के बीच में हमेशा के लिए दरार डाल दी, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब ये फिल्म लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ही वांटेड कि मनोज कुमार शुड डायरेक्ट द फिल्म। मनोज कुमार ने मना कर दिया। मनोज कुमार ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर चुके थे और उसके तहत अपनी फिल्म क्रांति, पहली फिल्म क्रांति बना रहे थे। सो ही पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन ये बात राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजेंद्र कुमार थॉट कि उन्होंने मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म लाई थी, दैट वाज हरियाली, तो शायद दोस्त जो है वो इस बार फेवर रिटर्न करेगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। एनीवे, इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है। कमिंग अप, आशुताई का ये गाना फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, ओनली ऑन पुरानी जींस।
1: Ha ha ha ha ha!

कि ये फिल्म देवानंद साहब ने जीना तवान के लिए बनाई थी। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड ये जो फिल्म थी ना हीरा पन्ना, इसमें देव साहब और जीना तवान थे। अब क्यों ये फिल्म उन्होंने उनके लिए बनाई थी, ऐसा वाई पीपल से इज बिकॉज ये जो फिल्म थी उससे पहले आई थी हरे राम हरे कृष्णा, और उस फिल्म में देव साहब ने जीना तमन को लॉन्च किया था। जीना तमन उस फिल्म में देव साहब की सिस्टर बनी थी। ये फिल्म हिट होने के बाद ना इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे जीना तमन के, लेकिन सब बहन वाले। अब भाई जीना तमन तो ऑफकोर्स हीरोइन बनने आई थी, तो देव साहब ने उनको इन सारे ऑफर्स को ठुकराने के लिए मना किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम हीरोइन होगी, लीड हीरोइन की तरह काम करोगी। एंड देन दिस फिल्म के हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ऐसे किस्से कहानियां यहाँ चलती रहेंगी, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हीरो की हीरोइन भी बन चुकी हैं और हीरो की माँ भी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म शक्ति। राखी जी को सबने बेहद मना किया था कि ये फिल्म बिल्कुल मत करो, लेकिन राखी जी मानी नहीं। वेल, शक्ति में थी स्मिता पाटिल, बच्चन साहब, दिलीप कुमार एंड राखी जी। राखी जी जो बच्चन साहब के ऑलरेडी लव इंटरेस्ट बन चुकी थी इन द फिल्म कभी कभी एंड क्वाइट फ्यू फिल्म्स, वो ये फिल्म में बच्चन साहब की माँ बनने वाली थी। लोगों ने मना किया कि भाई मत करो ये फिल्म, लेकिन राखी जी को पता क्या इंटरेस्ट किया? दिलीप साहब की वाइफ बनना इन दिस फिल्म। सो शी सेड कि मैंने दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया इस बहाने।

ने मैं दिलीप साहब की बीवी का रोल तो कर लूंगी, तो उन्होंने ये फिल्म शक्ति करी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना लेकर के आई थी मैं। मेरा नाम है श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। तो बस गाने सुन करके वापस आओ, मैं यहीं वेट कर रही हूँ।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नीतू जी अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही थी इस फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना है फ्रॉम द फिल्म याराना, जिसमें नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली बार काम कर रही थी, तो शी वॉज इतना इन ओ ऑफ हिम कि उनके मुंह से ना डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो जब सेट पे उनको पहली बार जब डायलॉग बोलना था ना, वो था देखो किशन कोई आ गया। नीतू जी इतनी ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इम्प्रेस थी कि उन्होंने कपकपाते शब्दों में कहा, देखो देखो अमित कोई आ गया। अब भाई नाम उनका किशन था यानी बच्चन साहब का कैरेक्टर नेम, लेकिन अमित कहा उन्होंने। और काफी टाइम के बाद किशन किशन किशन किशन प्रैक्टिस करने के बाद ना, तब जा करके वो अमित को साइड रख पाई थी। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की बात है, मेरे यानी श्रेया के साथ होती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नीरज साहब ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा गाने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं उनमें से ये वाला अव्वल है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ रफी साहब का था ये गाना, एंड लिखने वाले थे नीरज जी। कहते हैं पोएट नीरज कह लो आप, या फिर यू नो लिरिसिस्ट नीरज कह लो, कवि नीरज कह लो, भाई बातों के शब्दों के तो वो हमेशा धनी थे। एंड दे ऑलवेज से कि नीरज जी को ना अपने होम टाउन में एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो प्यार उनको कभी नसीब नहीं हुआ, और उस प्यार के लिए वो हर साल खत लिखा करते थे और उसे पोस्ट नहीं करते थे कभी। तो ये जो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे, ये एक्चुअली में उनका एक खत था। एंड इस खत को पढ़ लिया था रफ़ी साहब ने, और उन्होंने कहा अरे इसको गाने में बनाओ ना, मैं इसे गाऊंगा। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: आई आई आई आई आई आई

इसी फिल्म को देखने के बाद तो सलीम जावेद साहब ने जिंदगी बदल दी थी बच्चन साहब की। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहिए के साथ ये गाना फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा, एक ऐसी फिल्म जिसमें बच्चन साहब के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। द ओनली हीरोइन हु अग्रीड टू वर्क विद बच्चन साहब इन दिस फिल्म वॉज अरुणा ईरानी जी। इस फिल्म को देखने के बाद सलीम जावेद साहब ने जब लिखी थी जंजीर, उन्होंने कहा कि उनको उनका लंबा घोड़ा मिल गया है। प्यार से बच्चन साहब को लंबा घोड़ा कहते थे दोनों। वेल, जंजीर के लिए बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन द स्क्रिप्ट राइटर्स यानी द एंग्री यंग मेन सलीम एंड जावेद जी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई ये फिल्म करेगा, अगर उनका कोई विजय होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब होंगे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

के साथ ये जो गाना आपने सुना करेक्ट इज फ्रॉम द फिल्म कर्स। आप ये फिल्म करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषि कपूर साहब। सुभाष घई ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, वो यू नो इनिशियल स्टेज पे थे, बट वो ये री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे फिल्म बनाना चाहते थे। इस सब्जेक्ट ने ऋषि कपूर को इतना इंटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन रणधीर कपूर को किया था। एंड सुभाष घई चाहते थे कि उनके पास अवेलेबल तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, काका, बट ही वॉन्टेड अ यंगर हीरो टू प्ले द रोल ऑफ मोंटी, और इसलिए ऋषि कपूर को कान पकड़ के रणधीर कपूर ले आए, और फिर तो मूवी वाज सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया श्रेया ने, कम राइट बैक।

0: साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सलीम और जावेद की जोड़ी टूटने के बाद ये पहली फिल्म थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना इस फ्रॉम द फिल्म बेताब, यानी धर्म पाजी के बेटे सनी देओल की डेब्यू फिल्म। और धर्म पाजी वाज द वन जिन्होंने अपने दोस्त जावेद अख्तर को ब्रेक दिया जब इन दोनों की, सलीम और जावेद की जोड़ी टूट गई। सो दिस बिकेम द फर्स्ट फिल्म जो जावेद अख्तर साहब ने एज एन इंडिपेंडेंट राइटर लिखी थी। वेल, पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया और इसी फिल्म बेताब का गाना आपके लिए था। अब भाई जल्दी से वापस आओ क्योंकि अगली फिल्म के बारे में भी तो बताना है। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, और अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी फिल्म का है जो थ्रिलर फिल्म थी लेकिन इट वाज नोन मोर फॉर इट्स म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म के लिए अपना फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट रफी साहब ने गाया ये गाना। बताओ बताओ कौन सी फिल्म का है? करेक्ट, मूवी का नाम कर्ज, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बैक्ट फिल्म फेयर अवार्ड। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ अब चले हाईवे पे। ऑलराइट, जाने से पहले एक हाईवे हिट जो मैं डेडिकेट करके जाती हूँ आज वाला ना, किसी को डेडिकेट करने का मन नहीं है। ये एक ऐसा गाना है जो हम सबको पसंद है, और कभी कभी तो जब हम अकेले बैठते हैं ना तो इस गाने को सुन रहे होते हैं, स्पेशली इफ़ वी आर रेट्रो फैंस। मुकेश जी की आवाज़ है और गाना कौन सा है ये तो अभी आप सुन ही लोगे। तो ये सबका फेवरेट है, इसीलिए किसी खास बंदे के लिए नहीं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। फेसबुक और इंस्टा पे माई हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव। तो इस आवाज़ के पीछे का चेहरा देखना हो तो वहाँ आ सकते हो, कुछ वार्तालाप करनी हो वार्तालाप तो वो भी कर सकते हो। गुड नाइट।

It's Basanti. Yeah.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

हाथों से न पार तो निकल जाए। बोलूंगा सच में जो दे तू इजाजत, सबर भी अब करने लगा बगावत, सुल्फे हैं जालिम और आंखें हैं आफत, लगता है होने वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।